श्रोता मित्रों, आप समरिया चौक जाती कार्यक्रम गीत माला 102.8 FM पर या तो www.diversefm.com पर गीत माला कार्यक्रम दर गुरुवारे आपनी समक्ष रजूआत करवानी पूरी कोशिश करिए छे। रातना 8 થી 10 કલાકે 102.8 FM पर लूटन डंस्टेबल आउटन रेजिस लेटन बजर डेल्स मरी मिल्टन किंग्स अलोडेव मिल्टन किंग्स थी न्यूपोर्ट पेगनल अने नॉर्थम्पटन ना टोचमा अने आ बाजू फरी पाछा आवीए तो बेडफोर्ड बाजू बेडफोर्ड थी स्टीवन एज बलिंगटन सिटी हेटफील्ड अने अनेक आजूबाजू ना विस्तारों में के पछी तमे एचवेर ना टोचमा सांभळता होय तो पण आपनुं स्वागत छे के दुनियाना कोई पण खूणामां सांभळता होय अने खास

श्रोता मित्रों, आप सुन रहे हैं चौक जाते कार्यक्रम गीत माला 102.8 FM ऊपर या तो www.diversefm.com ऊपर गीत माला कार्यक्रम दर गुरुवार आपने समझ रहे जो आज कराने पूरी कोशिश करी है रात ना 8 से 10 कलाक है।

श्रोता मित्रों, आप समरिया चौक जाती कार्यक्रम गीत माला 102.8 FM पर या तो www.diversefm.com पर गीत माला कार्यक्रम दर गुरुवार आपने समक्ष रजूआत करने पूरी कोशिश करे छे रात ना 8 થી 10 કલાકે. તમે સાંભળો અને બીજાને સંભળાવો અને સમયની વાત આવે ત્યારે